0: मैं तेरी जरा सी ही मैं तेरी जरा सी ही मैं तेरी वाकई यार आगे मावा कौन कौन की किन्ना वड़ा कमा दारा चाहे भी कमा दारा वाचा कमा दारा जंता कमा को वड़ा कबो कोवा वाकई यार काय नाम मेरा वजह दरी नोरी के चेंज लो मरो मैं ना के बोली को जलो मावा दो दिन के यार उसमें दिया तो यार काय की मावा दिन मुंबई रह कबारी मां ताज़ा रह कबारी ये मुंहार मां ताज़े बोलो मिगर कबूत के नेचुर लाते ताज़े बोलो मिगर कबूत के लगेरा मौके नोटी यंदे लगेरे नो लगेरे से मनो गारा गारा लगेरे से मनो वंदे वंदे वा यार ताज़े बोल रहा ही बाहा बा
1: मिंकंग एफएम नो सिनानु के टिंटा
2: day fm nosna sarti habaru jime den yottido biyo jobbo kan hokkata endi